सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र मुकद्दस तिनकी गोद अनुमान है गुरु प्रसाद सिंह जी हो सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है।

कीमत पाई। ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई, कहण न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुर

लागै भूख, उत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहिब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड्याई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए। ना ओह मरै ना होवै सोग, देंदा रहै ना चूकै भोग। गुण एहो होर नाही कोए, ना को होआ ना को होए। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन कर कै कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज समात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जान सतगुर सत पुरखा। बिनो कर

मिलै त्रिपताशह मिल संगत गुण प्रगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास

एक पढ़ है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड अवर ना कोई। तू जुग जुग एको सदा, सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे पावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सहका जानोई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंढा साई, जो तौ पावै सोई थीसी। जो तू देह सोई हौ पाई रहाउ। सब तेरी तू सबने त्याया, जिसनो कृपा करहै तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लाता मन मुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मिल।

सहजेही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर ना कोए। तू कर कर वेखै जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला तित सरवरड़ै पई लेने वासा, पानी पावक तिन है किया। पंकज मोह पाग नहीं चालै, हम देखा तह डूबी आले। मन एक न चेतस मूड़ मना, हर बिसरत तेरे गुण गलिया। रहाओ ना हौ जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगधा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा पई परापत, मानुख देहुरिया। गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत भाज केवल नाम, सरंजाम लाग भव जल तरन कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै। रहाऊ

बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो जे को खावै जे को पुंचै तिसका होए उधारो। एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख उरतारो कम संसार चरण लग तरियै सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवां।

पावड़ी। तिथे तू समर्थ जिथे कोए नाहे, ओथे तेरी राख अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरे छड जाहे, पाऊ जल बिखम अस गाहौ गुर शब्दी पार पाहे। जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे, कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब सैनो कृपाल संभाले साहे साहे, बिरथा कोई ना जाए। जे आवै तो दयाहे, सलोक महला पंजवां। अंतर गुर आराधना जिहवा जप गुर नाओ, नेत्री सतगुर पेखना श्रवणी सुनना गुर नाओ। सतगुर से तीरतिया दरगह पाइय ठाओ, कहो नानक किरपा करे जिसनो ए वथ दे। जग मह उत्तम काडी है विरले के ई के। महला पंजवा।

0: संगति प्यार सहत बुलाओ फतेह आखो भाई
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: परम सन्मान योग पतत पावन दया सिंध कृपा निध गुरु गरीब निवाज सचे पातशाह जी जुग हो जुग अटल जुग हो जुग अटल दसां पातशाहियां दी जग दी जोत

0: हट कराओ बिरोने की बदीदा, मुठो हट कराओ बिरोने की बदीदा, देख भाई आज भी समा मिली सदीदा, देख भाई आज भी समा मिली सदीदा।
1: होता है बलवंत सिंह भी कौम फरीदानू, होता है बलवंत सिंह

गुरु दीप की महला पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जय कर गीता के करते का हो विचार तत कर बाप सुहला सुगुरु सुजन हाल तुम बाप मगन पाव का सुहला पाव वारी जित सुहला सदा सुख हो रहा नित नित जीड़े समाली न देखे का देव नहार दीना दन के मत ना पवत सदाते कब शुमार संबत शाह लिखिया मिल कर पावो तेल देहो सजन आशीषणिया जो हो वसा विश मेल कर करह पहुंचा सदर नित भवन सदन हार सिमरिय नानक से दे आवन राग समहला पहला श्री कर से गुरु से उपदेश गुरु गुरु के विषने के बाबा जय कर गुर ते की तो हो सो कर राग बनाई तुय रहा विश्वे चसियां कड़ियां पहदा तिति वारी माहो हुआ सूरज गुरु तेरे एक नानक करते के केते वेश राग तना श्री महला पहला गगन में थाल रब चंद्र दीप के बने थाल का मंडल दिन कुमती धूप मल्या अनलो पवन चबलो करी शकल पनराय फुलंत ज्योति कैसी आरती होई पवखन न तेरी आरती न हत शब्द वार जंत पेरी रहा सहस तब नैन नन नैन है तोहे को सहस मूर्त नन एक तोहे सहस पद में मिल नानेक पद गंध बिन सहस तब गंध जलत मोहे सब में ज्योत ज्योत है सोए तिस दे चानन सब में चानन होय गुरु साखी ज्योत प्रगट होय ज्योत स्वभाव स्वरती होय हर चरण कमल मुकरंद लोभित मनो अंतिनो मोहे आई पियस कृपा जल दे नानक शरण को होय जाते तेरे नय वर्षा राग उड़ी पूर्व महला चौथा काम क्रोध नगर भव भरिया मिल साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखित लिखे गुरु पाया मन हर लिब मंडल मंडा हे कर साधु दिलीप नड्डा हे कर डंडा उत्पन्न वड्डा हे दुहा शाकत हर साधन जाने तनंतर हो मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चले चुबत पाद जम काल सह सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम सुमानी दुख जन्म मरण पुरख खंडा हे बनासी पुरख पाया परमेश्वर बहुत शोभ खंड ब्रह मंडा हे हम गरीब मुश्किल प्रभ तेरे हर रात रात मन वड्डा हे दिन नानक नाम दा टेक है हर नाम ही सुख मंडा हे दा गोड़ी पुरख महला पनवा तो दो बिनती सुनो मेरे बीता संत ठहल के बेला यहाँ खाट चलो हर लहा गव संसहेदा औद कटे दिन सर नारी मन गुरु मिल काज स्वर रहा ए हो संसार विकासों से मैं तलो ब्रह्म ज्ञानी जिसै जगाए पिया एहो दास का तक तिन जानी जा को आई सोई बिहार जो हर

मिट, एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो।

उन संग मोहे उधारु। सुखमनि सुखमृत प्रभ नाम, भगत जिन्ना कै मन विश्राम रहाउ। प्रभु कै सिमरन गर्भ न बसै, प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभु कै सिमरन काल पर हरै, प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै। प्रभु सिमरत कछ बिघन न लागै, प्रभु कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभु कै सिमरन भउ न व्यापै, प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै। प्रभु का सिमरन साध कै संग, सर्व निदान नानक हर रंग। प्रभु कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद, प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत बुद्ध। प्रभु कै सिमरन जब तब पूजा, प्रभु कै सिमरन बिन सह दूजा। प्रभु कै सिमरन तीर्थ इसनानी, प्रभु कै सिमरन दरगह मानी। प्रभु कै सिमरन हुए सुफला, प्रभु कै सिमरन सुफल फला। से सिमरै जिने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभु का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा। प्रभु कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभु कै सिमरन सब किछ सुझै। प्रभु कै सिमरन नाही जम त्रासा, प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम रिद माहि समाए। प्रभ जी बसै साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरै से तनवंते, प्रभ को सिमरै से पतवंते। प्रभ को सिमरै से जन परवान, प्रभ को सिमरै से पुरख प्रधान। प्रभ को सिमरै से बे मोहताजे, प्रभ को सिमरै से सर्व के राजे। प्रभ को सिमरै से सुखवासी, प्रभ को सिमरै सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगैर वाला। प्रभु को सिमरह से पर उपकारी, प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी। प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे। प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता। प्रभु को सिमरह तिन अनदख नेरे, प्रभु को सिमरह बसै हर नेरे। संत कृपा ते अंदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहु न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सह समानी। प्रभु कै सिमरन निचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल विगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन कांत न पार। सिमरै से जन जिनको प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाय। हर सिमरन भय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चौंकुंठ जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की सगल अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर्द दुख भंजना, कट कट नाथ अनाथ। शरण तुम्हारी आयु, नानक के प्रभु साथ। अष्टपति जय मात पिता सुत मीत न पाई, मानुहा नाम तेरे संग सहाई। जय महाप्यान दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जय मुश्किल हो वै अत भारी, हर को नाम किन माए उधारी। अनिक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै। गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परै, हर का नाम जपत निस्तरै। अनिक माया रंग तिक न बुझावै, हर का नाम जपत आघावै। जे मार ग्यो जात इकेला, तै हर नाम संग होत सुहेला। ऐसा नाम मन सदा त्यागै, नानक गुरमुख परम गत पाई। छूटत नहीं कोट लकबाई, नाम जपत है पार पराही। अनिक बिघन जय आय सिंगार है, हर का नाम तत्काल उदार है। अनिक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। हौ मैला मल कबू न तोवे, हर का नाम कूट पाप कूवे। सा नाम जपु मन रंग, नानक पाई है साध कै संग। जे मार के गन जाए।

नकुसा हर का नाम हां संग तुसा जी पैड मंद गुबारा हर का नाम संग उजियारा जा पंत तेरा को नसियानू हर का नाम तै नाल पहचानू जय महा भयान तपत बोकाम तै हर के नाम की तुम ऊपर छाम जा त्रिका मन तुझ आकर कह तै नानक हर हर अमृत बरकै भगत जना की बरत नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जनकूट हर जस करत संत दिन रात हर हर

विवेक है। हर का नाम जन को मुक्त जुगत, हर का नाम जन को तृप्त भुगत, हर का नाम जन का रूप रंग, हर नाम जपत का परे न भंग, हर का नाम जन की वडियाई, हर का नाम जन शोभा पाई, हर का नाम जन को भोग जोग, हर नाम जपत कचना है वियोग, जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजे हर हर देवा, हर हर जन कै मालक जीना, हर धन जन को आप प्रभु दीना, हर हर जन कै ऊट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी, यूत भोजन हर रस राते, सुन समाध नाम रसमाते, आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रकट नहीं छपै, हर की भगत मुक्त भव करे, नानक जन संकेते तरे, पार जात्यो हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम, सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लत्था, नाम की महिमा संत ऋतवसै, संत प्रताप दुर्ग सब नसै, संत का संग विभागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर न हुए, नानक गुरमुख नाम पावै जन को, श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्व टंडोल, पूज सनाई हर हरे, नानक नाम अमोल, अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खट शास्त्र सिमृत ज्ञान, योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, सगो त्याग बन मध्य फिरिया, अनेक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना, शरीर कटाए होमे कर राती, व्रत नेम करे बहु पाती, नहीं तुल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपी एक बार, नौ खंड पृथ्वी फिरे चिर जीवे, महा उदास तुपी सिर थीवे, गुण माय हुम्मत प्राण, कनिक सब है वर भूम दान, न्यौली कर्म करे बहु आसन, जैन मार्ग संजम मत साधन, निमक निम कर शरीर कटावे, ताओ पी हो मैं मैल न जावे, हर के नाम समसर कछ नाही, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही, मन कामना तीरथ दे छुट्टे, गर्भ गुमान मन ते हुट्टे, सोच करे दिन सर रात, मन की मैल न तन ते जात, इस देही को बहु साधना करे, मन ते कबू न बिखिया टरे, जल तो है बहु देह नीत, शुद्ध काओ है काची पीत, मन हर के नाम की मैं माऊच, नानक नाम उदरे पतत बहुमूच, बहुत सियान पजम का पाव व्यापै, अनेक जतन कर त्रिसन्ना त्रापै, भेख अनेक गनी बुझे, कूट पाव दरगह नी सिजे, झूठ सुनाई उपयाल, मुहि व्यापह माया जाल, अवर कर तू सगली जम डाने, गोविंद भजन बिन तिल नहीं माने, हर का नाम जप दुख जाए, नानक बोले सह सुभाए, चार पदार्थ जी को मांगे, साजना की सेवा लागे, जी को अपना दुख मिटावे, हर हर नाम हृदय सुध गावे, जी को अपनी शोभा लूरे, सा संगे होमे चूरे, जी को जन्म मरण ते डरे, साजना की सरनी परे, जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ताके बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख प्रधान, सा संग जाका मिटै अभिमान, आपस को जो जाने नीचा, सो गणी है सब ते उच्चा, जाका मन सगल किरीना, हर हर नाम तिन घट घट चीना, मन अपने ते बुरा मिटाना, फेक है सगल सिर साजना, सुख दुख जन समदृष्टेता, नानक पापुन हिलेपा, निर्धन को तन तेरो नाओ, निथावे को नाव तेरा ताओ, निमाने को प्रभ तेरो मानो, सगल कटा को देवो दान, कर्ण करावन हार स्वामी, सगल कटा के अंतर जामी, अपनी गत मित जानो आपे, अपन संगा प्रभराते, तुमरी उष्ट तुम ते हुए, नानक अवर न जान सकोए, सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जब निर्मल कर्म, सगल क्रिया में उत्तम क्रिया, सा संदुरमत मल हिरिया, सगल उद्यम में उद्यम भला, हर का नाम जपू जी सदा, सगल बानी में अमृत बानी, हर को जस रसन बखानी, सगल तान ते उत्तमता, नानक जी कट वसै हर नाम, श्लोक निर्गुण यार यानिया, सो प्रभ सदा सुमाल, जिनकी अतिचित रख, नानक निभी नाल, अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू सास सुवार सी गारिया, गर भगन में जिन्हें उबारिया, बार व्यवस्था तुझे प्यार है दूध, भर जोगन भोजन सुख सूद, बिरद पयाव पर साख सैन, मुख पयाव बैठ को दैन, एव निर्गुण गुण कछु न बुझे, बख्श ले हो तो नानक सीजे,
जे प्रसाद तारूपर सुख बसै सुत प्रात मीत बनता संघसै जे प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पव कमुला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग सात बसादी ने हस्त पाव करने तरसना तिशय त्याग और संरचना ऐसे दुख मूढ़ व्यापे नानक काढ़ लियो प्रव्यापे आदंत जो रख नहार तिस्यो प्रीत न करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै ता स्यो मूढ़ा मन हिलावै जो ठाकुर सत सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दर गह मार तिसै विसारै मुगदै जान सदा सदैव भूलन हार नानक रखन हार अपार रतन त्या कौडी संग रचै सा छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्थिर कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाय तिसका श्रम करै संग सहाय तिस पर हरै चंदन लेप उतारै धोए गर्द प्रीत भस्म संग होए अंधकूप मैं पथत विकराल नानक काढ लिहो प्रभु दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर भेकंतर मलमाया छपसनाई कच करै छिपाया बार ज्ञान ध्यान स्नान अंतर व्यापै लोभ सुवान अंतर अग्न बार तन स्वाहा गल पात्र कैसे त्रय अथाह जाके अंतर बसै प्रव्याप नानक ते जन सह समात सुने अंधा कैसे मार्ग पावै कर गहले हो ओढ़ निभावै कहाँ बुझारत बुझै डोरा निष्कही है तो समझै पूरा कहाँ विष्ण पद गावै गुंग जतन करै तो पी सुर भंग कै पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू हाँ उस गवन करतार करुणा मैं दीन बेनती करै नानक तुमरी कृपा तरै संग सहाई सुहावै न चीत जो बैराई ता सुप्रीत बलुआ के गृह पीतर बसै अणद केल माया रंग रसै दृढ़ कर मानै मने प्रतीत काल न आवै मूढ़े चीत बैर विरोध काम क्रुद मोह झूठ विकार महा लोभ त्रोह हे आहु जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख लिहु अपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पैर दास जीव पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुमरी कृपा मैं सूख कनेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुमरै सूत्र तारी तुम ते हो सुआज्ञाकारी तुमरी गत में

नानकउ नसी जई बिन नावै पत जाय। स्पदी दस वस्तु ले पाछे पावे, एक बस कारण विकोट गवावे। एक भी ना दे दस भी हिर ले, तो मूड़ा कहु कहा करे। जिस ठाकुर स्यो ना ही चारा, ताकू की जय सद नमस्कारा। जाके मन लागा प्रभ मीठा, सर्व सुख ताहू मन उठा। जिस जने अपना हुक्म नाया, सर्व तोग नानक तिन पाया। अगंत सब अपनी देरास, खास पीत बरतैन दुलास। अपनी अमान कछ बौर साव ले, अज्ञानी मन रोस करे। अपनी परती ताप ही खोवे, बौर उसका विश्वास न होवे। जिसकी वस्तु से आज्ञा राखे, प्रभु की आज्ञा मान माथे। उसते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दयाल। अनिक पात माया के हित, सर पर होवत जान अनित। बिरकी छाया स्यो रंग लावे, ओ बिन सहयो मन पछतावे। जो दिसे सो चल नहार, लपट रो ते अंध अंधार। बटाओ स्यो जो लावे नेही, ताकू हाथ न आवे के। मन हर के नाम की भी सुखदाई, कर कृपा नानक भले लाई। मिथ्या तन धन कुटम सबाया, मिथ्या हम ममता माया। मिथ्या राज जीवन धनवाल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अशुभ वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया भीख हस्ता। मिथ्या ध्रुमो अभिमान, मिथ्या पशु पर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्व को ही रह। मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रै रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद। मिथ्या चरण पर विकार को तावह, मिथ्या मन पर लुभ लुभावह। मिथ्या तन्ने पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा। बिन बूझे मिथ्या सब पहे, सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी साकत की यार जा, साच बिना कह हो सूचा। बिरता नाम बिना तन अंध, मुखावता कह दुर्गंध। बिन सिमरन दिन रैन ब्रता बिहाय, मेघ बिना ज्यो खेती जाए। गोविंद भजन बिन ब्रिथे सब काम, ज्यो कृपन के निरार्थ दाम। धन धन ते जन जी कट बस्यो, हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ। रहत अवर कछ अवर कमावत, मानी प्रीत मुखो गंडलावत। जानन हार प्रभु परवीन, बाहर भेख न काहू पीन। अवर उपदेश आप न करे, आवत जावत जन मै मरे। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरे संसार। जो तुम पानी तिन प्रभु जाता, नानक कुन जन चरण पर आता। करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने, अपना किया आप माने। आप है आप, आप करत नबेरा। किसे दूर जनावत, किसे बुझावत नेरा। उपाव सियान सगल ते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत। जिस भाव है तिसले लड़लाए, थान तनंत रहा सुमाए। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। श्लोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहंगमेव। नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर कौरक मन माहे। जे प्रसाद सुगंध तन लावह, तिसको सिमरत परम गत पावह। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसे त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याई त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावह, तिसे त्या कतवर लुभावह। जे प्रसाद सुख से सोई जय, मन आठ पहरता का जस गावी जय। जे प्रसाद तु सब को मान, मुखता को जस रसन बखान। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याय केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जप दर गह मान पावह, नानक पत चेती कर जावे। जे प्रसाद आरो कंचन देही, लिव लावो तिस राम सनेही। जे प्रसाद तेरा उल्ला रहत, मन सुख पावे हर हर जस कहत। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके, मन सरनी पर ठाकुर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझको न पहुँचे, मन साथ साथ सिमरो प्रभु उच्चे। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद आपूखन पहरी जय, मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जे प्रसाद अश्व हस्त सुवारी, मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राग प्रभु अपने मना।
जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठ सत सह त्याई तिसह त्याई जो एक अलख इहा उहा नानक तेरी रखै जे प्रसाद करै पुन बहुदान मन आठ पैर कर तिसका ध्यान जेह प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सा चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप जे प्रसाद तिरनी की जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात जे प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह जे प्रसाद सुनै करण नाद जे प्रसाद पेखै विस्माद जे प्रसाद बोलै अमृत रसना जे प्रसाद सुख सह जी बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पाव है जे प्रसाद सुख सह समाव है ऐसा प्रभु त्याग बरकत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल नमनु विसार जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर्तता को जाप जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसे जान मन सदा हजूरे जे प्रसाद तुम पावै साथ रे मन मेरे तू ता सिवराच जे प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गावाए सो हर गुण गाओ प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व निदान प्रभ तेरी माया प्रभु कछु न किन्हु लया जित जित लावो तित लगै हर नाथ नान किन कह कछु नहात सलोक अगमगाद पार ब्रह्म सोए जो जो कह सुमुक्ता होए सुन मीता नानक बिनवंता साजना के चर्ज कथाष्टपदी साध के संग मुखु जल होत साध संग मिल सगली खोत साध के संग मिटे अभिमान साध के संग प्रगटे सुज्ञान साध के संग बुझे प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध के संग पाए नाम रतन साध के संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरने कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माही समानी साध के संग गोचर मिले साध के संग सदा प्रफुल्लै साध के संग आवे बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध के संग मनोहर बैन साध के संग न कत मुता वै साध संग स्थित मन पावे साध के संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न साध संग दुश्मन समीत साधु कह संग महापुनीत साध संग किस्यो नहीं बैर साध के संग न बीगा पैर साधक संग नाही को मंदा साध संग जानी परमानंदा साधक संग नाही होताप साधक संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बने आई साधक संग न कबू हुतावै साधक संग सदा सुख पावै साध संग दस्त गोचर लह साधु कै संग अजर सह साधक संग सह थान उच्चै साधु कै संग महल पहुँचै साधक संग दृढ़ सब धर्म साधक संग केवल पार ब्रह्म साधक संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक संग सब कुल उदार है साध संग साजन मीत कुटम निस्तार है साधु कै संग सो तन पावै जिस तन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साधक संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन साधक संग प्रभ थान गमु नानक साधक संग सफल जनामु साधक संग नहीं कचकाल दर्शन भेटत होत निहाल साधक संग कलुकत हरै साधक संग नरक पर हरै साधक संग इहा उहा सुहेला साध संग विचरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साधक संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद वसै नानक उदरै साध सुन रसै साधक संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाओ साधक संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साधक संग लगै परम मीठा साधु कै संकट कट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत भई हमारी साधक संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा भेद न जान है जीता सुने तेता बख्यान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का ना ही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंचते ऊंची साध की शोभा मूचते मुची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै सुबिन कोए नानक के लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी
ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोष जैसे सूर सर्व कौशोक, ब्रह्म ज्ञानी कह दृश्यमान जैसे राज रंग को लागे तुल्पवान, ब्रह्म ज्ञानी कह तीरजेत ज्यों बसदा को खुद को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाऊ नानक ज्यों पाव का सह सुभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल थे निर्मला जैसे मैं न लागे जला, ब्रह्म ज्ञानी के मन हुए प्रगास जैसे तारु पर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कह मित्र शत्रु समान, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच दे ऊंचा मने अपना है सब ते नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना तुम रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर भया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी को प्रयास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कह गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार माह, ब्रह्म ज्ञानी कह नाही तंदा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कह हुई सुफला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी सम सगल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कह कह रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रसंग, ब्रह्म ज्ञानी कह नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कह नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सुजागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कह मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कह कर सदानंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी कह हुए चिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खुज महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी कह सगल मन माही, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश, ब्रह्म ज्ञानी का कतिया न जाय अदाखिर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बकाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता ब्रह्म ज्ञानी सद जीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब पर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी, श्लोक उतार है जो अंतर नाम सर्व में पे कह भगवान, निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानक को पर सगल निस्तार है अष्टपदी, मिथ्या ना ही रसना परसु मन में प्रीत निरंजन दर्शु पर त्रै रूप न भेखै नितर, साध की टैल सन संग हेत कर न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा गुरु प्रसाद विख्या पर हरै, मन की बास न मन ते टरै इंद्री जित पंच दुख ते रहत नानक कूट मध्य को ऐसा परस, वैष्णु सोजि सुपर सुपर सन बिशन की माया ते हुए भिन्न, कर्म करत हो वह ने कर्म तिस वैष्णु का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाचे केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक को वैष्णु परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग, मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म, सास पापा मलको वै तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करे नित नीत मन तने अर्पय विष्णु प्रीत, हर के चरण हृदय बसावे नानक कैसा भगवती भगवंत को पावे, सो पंडित जो मन प्रभु दै राम नाम तुम मैं सोदे, राम नाम सारस पीवे उस पंडित कै दे जग जीवे, हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नायावे, भेद प्राण सिमरत भू जय मूल सुखम मै जानै स्थूल, चौवरना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवरना में जपै को नाम, जो जो जपै तिसकी गत होए सा संग पावे जन कोए, कर कृपा अंतर उर तार है पस प्रेत मुद पात्र को तार है, सर्व लोक का उकद नाम कल्याण रू मंगल गुण गाम, काहु जुगत कितने न पाइये धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म, जिसका मन पार ब्रह्म का निवास जिसका नाम सतराम दास,
ਆਤਮ ਰਾਮ ਤਿਸਨ ਦਿਰੀ ਆਇਆ ਦਾਸ ਦਸਨ ਤਨ ਭਾਈ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਿਕਟ ਨਿਕਟ ਹਰ ਜਾਨ ਸੋ ਦਾਸ ਦਰਗਹਿ ਪਰਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਦਾਸ ਕੋ ਸਭ ਸੋਝੀ ਪਰੈ ਸਗਲ ਸੰਗਾਤ ਮੂ ਦਾਸ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਤਮਿਤਾ ਵੈ ਜੀਵਨ ਮੁਖ ਸੋ ਕਹਾ ਵੈ ਤੈਸਾ ਹਰਕ ਤੈਸਾ ਉਸੋਗ ਸਦਾਨੰਦ ਤੈ ਨਹੀਂ ਵਿਯੋਗ ਤੈਸਾ ਸਵਰਨ ਤੈਸੀ ਉਸ ਮਾਟੀ ਤੈਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੈਸੀ ਬਿਖਾਟੀ ਤੈਸਾ ਮਾਨ ਤੈਸਾ ਅਭਿਮਾਨ ਤੈਸਾ ਰੰਗ ਤੈਸਾ ਰਾਜਾਨ ਜੋ ਵਰਤਾਏ ਸਾਰੀ ਜੁਗਤ ਨਾਨਕ ਗੋ ਪੁਰ ਕਹੀਏ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸਗਲੇ ਠਾਉ ਜਿਤ ਜਿਤ ਘਰ ਰਾਖੈ ਤੈਸਾ ਤਿੰਨ ਆਉ ਆਪੇ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਜੋਗ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਸੋਈ ਪੁਨ ਹੋਗ ਪਸਰਿਉ ਆਪ ਅਣਤ ਤਰੰਗ ਲਖੇ ਨਾ ਜਾਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਰੰਗ ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇ ਤੈਸਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਾਨਕ ਭਏ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਅਨੇਕ ਜਨ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਾਨਕ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਭ ਰਚੀ ਬਹੁ ਵਿਧਨਿਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਪੂਜਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰੀ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਤੀਰਥ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਬਣ ਭਰਮੈ ਉਦਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਕੇ ਸਰੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਤਪੀਸਰ ਹੋਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਆਤਮ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਕਵਕਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਵਤਨ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੰਤ ਨ ਪਾਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਅਭਿਮਾਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨੀ ਕਈ ਕੋਟ ਕਿਰਪਨ ਕਠੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਅਭੇਗਾਤਮ ਨਿਕੋਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦਰਵ ਕੋਹਿਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰ ਦੁਖ ਨਾ ਕਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਸਰਮਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਪਰਦੇਸ਼ ਪਰਮਾਹੇ ਜਿਤ ਤਿਤ ਲਾਓ ਤਿਤ ਤਿਤ ਲਗਨਾ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਜਾਣੈ ਕਰਤਾ ਰਚਨਾ ਕਈ ਕੋਟ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਜੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜੇ ਰਸ ਭੋਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਉਪਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਰ ਬਿਖ ਨਿਪਜਾਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਸ਼ ਭੂ ਮੰਡਲ ਕਈ ਕੋਟ ਸਸੀਅਰ ਸੂਰ ਨਖੇਤਰ ਕਈ ਕੋਟ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਇੰਦਰ ਸਿਰ ਛਤਰ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵ ਹੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜ ਸਤਾਮ ਸਾਤਕ ਕਈ ਕੋਟ ਬੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚਿਰ ਜੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਕਿੰਨਰ ਪਿਸਾਚ ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ ਸਭ ਤੇ ਨੇਰੈ ਸਭ ਹੁੰਤੇ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਆਪ ਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮਹਿ ਜੀਵੈ ਮਰੈ ਕਈ ਕੋਟ ਬੋਜੋਨੀ ਫਿਰਹਿ ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਘਰ ਲੈ ਥਕ ਪਾਹੇ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ ਜੈ ਜੈ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤੈ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛੁ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਹਾਥੇ ਕਈ ਕੋਟ ਭੈ ਵੈਰਾਗੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਕਿਨ ਨਿਵ ਲਾਗੀ ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਖੋਜਨ ਤੇ ਆਤਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਿਆਸ ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ ਕਈ ਜੁਗਤ ਗਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਾਸਾਰ ਸਦਾ ਸਦੈ ਕੇ ਕੰਕਾਰ ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਤ ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਸਮਾਤਾ ਕੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੈ ਕੋ ਨੇਤਰੇ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਤ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸੁਮਾਰੇ ਨਾਨਕ ਕੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵੇ ਕਹਿ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ ਨੈ ਜਲ ਤਲ ਮਹੀਲ ਸੋਹਿ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋ ਕਿਨ ਮੈਂ ਥਪ ਥਪ ਨਹਾਰ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛੁ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਧਰ ਰਹਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ ਹੁਕਮੇ ਉੱਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁਕਮੇ ਅਨਿਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾਨਕ ਸਮੈ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਮਾਨੁ ਗਤ ਪਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਤਰ ਤਰਾਵੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤਿਰਾਕੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ ਪ੍ਰਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਉਧਾਰੈ ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਣ ਵਿਚਾਰੈ ਦੂਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਪ ਸੁਆਮੀ ਖੇਲੈ ਵਿਖਸੈ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੈ ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਰਨ ਆਵੈ ਕਹੁ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਆਵੈ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ ਅਣਜਾਣ ਵਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ ਜੇ ਜਾਣ ਤਾਪਨਾ ਬਚੈ ਭਰਮੇ ਭੁੱਲਾ ਦੈ ਦਿਸਤਾਵੈ ਨਿਮਕ ਮਾਂ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰਿਆਵੈ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾ ਮਿਲੇ
किन मैं नीच कीट को राज उपार ब्रह्म गरीब निवाजा का दृष्ट कछु नयावे तिस तत्काल दै जिस प्रगटावे जा को अपनी करे बख्शीशता कालिका न गने जगदीश जीव पिंड सब तिसकी रासु घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगासु अपनी बनता बनाई नानक जीव देख बढ़ाई इसका बल ना ही सहात करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तुझ भावे सोई पुनथियो कब हूँ ऊंच नीच मह बसै कब हूँ सोग हरख रंग हसै कब हूँ निंद चिन्ह व्यवहार कब हूँ बकाश बयाल कब हूँ बेता ब्रह्म विचार नानका मिला बनहार कब हूँ नृत करे बपात कब हूँ सोए रह दिन रात कब हूँ महा क्रोध विकराल कब हूँ सर्व की हो तरवाल कब हूँ हुए बह बड़ राजा कब हूँ पेकारी नीच का साजा कब हूँ अपकीरत मह आवै कब हूँ पला पला कहावै ज्यों प्रवरा कह तिब ही रह गुर प्रसाद नानक सच कह कब हूँ हुए पंडित करे बख्यान कब हूँ मोन धारी लावै ध्यान कब हूँ तट तीर्थ स्नान कब हूँ सिर साधिक मुख ज्ञान कब हूँ कीट हस्त पतंग हुए जिया निक जुन पर मैं परमिया नाना रूप जो स्वागी दिखावै ज्यों प्रभावै तिवै नचावै जो तिसभावै सोई हुए नानक दूजा वरना कोय कब हूँ साध संगत उपावै उस स्थान ते बहुर न आवै अंतर हुए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रतिक रंग सदा बसै पार ब्रह्म कै संग ज्यों जल मैं जले आए कटाना त्यों ज्योति संग जो समाना मिट के गमन पाए विश्राम नानक प्रभु कै सद कुरबान सलोक सुखी बसै मस्कीनी आय आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती हो स्वान जो जाना मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस को करवंत कहावै जिन मरे बोजुन परमावै धन पुम का जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा ज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानकी हां मुक्ता गै सुख पावै धनवंता हुए कर गर भावै तिन समान का संग न जावै बोल उस कर्मा अनुकूपर करे आस पल भीतर ताका हुए विनाश सब ते आप जाने बलवंत किन मैं हुए जाय पसमंत किसे न बदै आप अहंकारी धर्म राय तिस करे कुवारी गुर प्रसाद जा का मिटे अभिमान सो जन नानक दरगह परवान कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे अनिक तपस्या करे अहंकार नरक सुरख फिर अवतार अनिक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दर गह को कैसे गवै आपस को जो भला कहावै तिसे भला ही निकट न आवै सर्व की रेंजा का मन होए कौ नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख ना ही कोए जब जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जून मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लग निचना ही चीत जब लग मोह मगन संग माए तब लग धर्म राय दे सुजाए प्रभु कृपा ते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक छूटे सहस कटे लखूट तावै तृप्त न आवै माया पछ पावै अनिक भोग बिकिया के करे न तृप्तावै खप कमर बिना संतोख नहीं कूरा जय सुपन मनोरथ बिरते सब का जय नाम रंग सर्व सुख हुए बड़ भागी किसे प्राप्त हुए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक कर जाप करण करावन करने हार इसके हाथ कहा विचार जैसे दिष्ट करे तैसा हुए आपे आपा प्रभ सोए जो किछ कीनु सो अपने रंग सब ते दूर सबु कै संग पूजै देखे करे विवेक अपहे का पहे अनेक मरे न बिनसै आवै न जाए नानक सदी रहा समाए आप उपदेशै समझै आप आपे रचिया सब कै साथ आप किनु अपन विस्तार सब कछ उसका करने हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान तनंतर कै सोए अपने चलताप करने हार कौतुक कर रंग आपार मन में अमन अपने माहि नानक कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभु स्वामी गुर प्रसाद किने वकियानी सच सच सत सब कीना कूट मजे किने बिरले चीना भला भला भला तेरा रूप असुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी श्रवण बख्यानी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत शरण जो जन परै सो जन उदरन हार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत कै दुखन नार जा कटै संत कै दुखन जम ते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाए
संत कह दुखन नरक मैं पाए, संत कह दुखन मत होए मलीन, संत कह दुखन शोभा ते हीन, संत के हते को रखै न कोए, संत कह दुखन तान भ्रष्ट होए, संत कृपाल कृपा जे करै नानक संसंग निंदक भीतरै, संत के दुखन ते मुख पवै, संतन कह दुखन काग ज्यों लवै, संतन कह दुखन सरफ ज्यों पाए, संत कह दुखन त्रिगत ज्यों करमाए, संतन कह दुखन तृष्णा मैं चलै, संत कह दुखन सब को छलै, संत कह दुखन ते सब जाए, संत कह दुखन नीच निचाए, संत दुखी का था को नाए, नान संत पावे तोय पीगत पाहे, संत का निंदक मात ताई, संत का निंदक किंटिक न पाए, संत का निंदक महत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा विजोग, संत के निंदा दुख में दोख, नानक संत पाव है तंसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा पवित्र, संत का दुखी किसे का नहीं मित्र, संत के दुखी को डान लागे, संत के दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा विकारी, संत का दुखी जन्म में रह, संत के दुख न सुख ते टरै, संत के दुखी को ना ही ठाओ, नानक संत पाव है तां ले मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटै, संत का दुखी किते काज न पहुँचै, संत के दुखी को ध्यान फरमाइए, संत का दुखी उजड़ पाई है, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृतक की लोता, संत के दुखी की जड़ किच नाहे, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दुखी को वर्ण रखन हार, नानक संत पावै ता लेओ बहार, संत का दुखियों बिल लाए, ज्यों जल बिहुन मछरी तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, जो पावक इंदा नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटै केला, जो गुआड़ तिलके तुमाही दुहेला, संत का दुखी धर्म तिरैत, संत का दुखी सद मिथ्या कैत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक जो तिस पावै सोई थया, संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलै सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी न मरै न जीवाई है, संत के दुखी की पूजै न आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न तृष्टै कोई, जैसा पावे तैसा कोई हुए, पया किरत न मिटै कोई, नानक जानने सच्चा सोए, सब कर तिसके करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की औषध करो दिन रात, सत्याव सास की रात, सब कछ वर्तै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना के लाभ करने हार, दूसर कौन कह विचार, जिसनु कृपा करे तिसा पर नाम देवड भागी, नानक जन से श्लोक, तज हो से आनप सुरजन हो, सिमरो हर हर राए, एकास हर मन रखो, नानक दुख परम पहु जाए, अष्टपदी मानुक की टेक वृत्ति सब जान, देवन को एक कै भगवान, जिस कह दिया रह अगाए, बहुत न दृष्ण लग गया, मारे रखे को आप, मानुक है किस नाही हाथ, तिसका हुकुम सुखोए, तिसका नाम रखंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उसत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसनामृत पियो, सदा सुहेला कर लह जियो, नैनु पेक ठाकुर का रंग, सासंग विनसै सत्संग, चरण चलो मार गोविंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानकू जल मत्था, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदार के गुण गाहे, राम नाम जो करै विचारु, से तनवंत गणी संसारु, मन तनमुख बोलै हर मुखी, सदा सदा जानु ते सुखी, एको एक एक पछानै, तुत कियो सो जी जानै, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिनै निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानु तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, अंदिन कीर्तन, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रूप त्यो हर जन रहत, अंदिन कीर्तन केवल बकियान, ग्रिष्मै सोई निर्वार, एक ऊपर जे जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागै दुख, जिसको हर ब्रह्मन चित आवै, सो संत सुहेला नहीं दुलावै, जिस पर वे अपना कृपा करै, सो सेवक को किस ते डरै, जैसा सा तैसा दृष्ट आया, अपने कार्य में आप समाया, सोदत सोदत सोदत सीजिया, गुरु प्रसाद सब बुझिया, जब देखो तब सब किछ मूल, नानक सो सुखम सोई असूल, न कि जन्म न किछ मरै, अपन चलता भी करे, आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल मैं आप, अनिक जुगत रचता प्रताप, अविनाशी नाही किछ कण, धारण धारहु ब्रह्मांड, अलक अपे पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभु जाता सुसु पावंत, सगल संसार उदरै तिन मंत्र,
ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਸਗਲ ਉਧਾਰਨੂ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਦੁੱਖ ਵਿਸਾਰਨੂ, ਆਪੇ ਮੇਲੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਭ ਜਪੈ ਨਿਹਾਲ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੈ ਬਿਟਭਾਗੈ, ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸ਼ਰਾਮ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਪੁਰਖੋ ਉਤਮ ਕਰਮਾਲ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰੈ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਵਸੈ ਹਰ ਸੰਗ, ਸਹਿ ਸੁਭਾਇ ਹੋਵੈ ਸੋ ਹੋਈ, ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਪਛਾਣੈ ਸੋਈ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਕੀਆ ਜਨ ਮੀਠ ਲਗਾਨਾ, ਜੈਸਾ ਸਾ ਤੈਸਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਤਿਸਮਾਇ ਸਮਾਇ, ਹੋਏ ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ, ਉਨਹੁ ਬਨੇ ਆਏ ਆਪ ਸੁ ਆਪ ਦੀਨ ਮਾਨ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਜਨ ਇੱਕੋ ਜਾਨ, ਸਲੋਕ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ, ਪ੍ਰਭ ਬਿਰਥਾ ਜਾਨਣ ਹਾਰ, ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਤਰੀਐ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਟੂਟੀ ਗੰਢ ਨਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਸਰਬ ਜੀ ਆਪੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸਗਲ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਜਿਸ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਤਿਸ ਤੇ ਬਿਰਤਾ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਹਰ ਜਾਪ, ਅਵਨਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਆਪ, ਆਪਣ ਕੀਆ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਸੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਲੋਚੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਬਿਨਾਹੀ ਤੇਰੇ ਕਿਛ ਕਾਮ, ਗਤ ਨਾਨਕ ਜਪੇ ਕਰ ਨਾਮ, ਰੂਪਵੰਤ ਹੋਏ ਨਾਹੀ ਮੋਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਜੋ ਸਗਲ ਘਟ ਸੋ ਹੈ, ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਿਆ ਕੋ ਗਰਬ ਹੈ, ਜਾ ਸਭ ਕੀ ਤਿਸਕਾ ਦੀਆ ਦਰਬ ਹੈ, ਅਸੂਰਾ ਜੇ ਕੋ ਕਹਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਬਿਨਾ ਕਹਿਤਾ ਵੈ, ਜੇ ਕੋ ਵੇ ਬਹਿ ਦਾਤਾਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਨਹਾਰ ਜਾਨੈ ਗਾਵਾਰ, ਜਿਸ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਟੁੱਟੈ ਹੋ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਦਾ ਅਰੋਗ, ਜਿਉ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੈ ਥੰਮਨ, ਤਿਉ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥੰਮਨ, ਜਿਉ ਪਾਖਾਨਾ ਚੜਤਰੈ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰ ਚਰਨ ਨਗਤ ਨਿਸ਼ਤਰੈ, ਜਿਉ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਮਨ ਹੋਏ ਬੇਗਾ, ਜਿਉ ਮਾਉ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ, ਤਿਉ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਮਿਲ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਤਿਨ ਸੰਤਨ ਕੀ ਬਾਛੋ ਧੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਹਰ ਲੋਚਾ ਪੂਰ, ਮਨ ਮੂਰ ਕਾਹੇ ਬਿਲ ਲਾਈਐ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਿਖਿਆ ਪਾਈਐ, ਦੁਖ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਦੇਵਨ ਹਾਰ, ਅਵਰ ਤਿਆਗ ਤੂ ਤਿਸੈ ਚਿਤਾਰ, ਜੋ ਕਛ ਕਰੈ ਸੋਈ ਸੁਖਮਾਨ, ਭੂਲਾ ਕਾਹੇ ਫਿਰੈ ਜਾਨ, ਕੌਣ ਬਸਤਾਈ ਤੇਰੇ ਸੰਗ, ਲਪਟ ਰਿਓ ਰਸ ਲੋਭੀ ਪਤੰਗ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਹਿਰਦੇ ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਪਤਿ ਤੀ ਘਰ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਵਕਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ, ਤਜ ਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੂਲ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੂ, ਲਾਦ ਕੇ ਸੰਤੈ ਸੰਚਾਲ, ਅਵਰ ਤਿਆ ਵਿਖਿਆ ਜੰਜਾਲ, ਧਨ ਧਨ ਕਹਿ ਸਭ ਕੋਏ, ਮੁਖੂ ਜਲ ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਸੋਏ, ਓ ਵਾਪਾਰ ਵਿਰਲਾ ਵਾਪਾਰ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਾ ਕਹਿ ਸੁਧ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ, ਚਰਨ ਸਾਧਕੇ ਧੋਏ ਧੋਏ ਪੀਓ, ਵਰਪ ਸਾਧਕੋ ਆਪਣਾ ਜੀਓ, ਸਾਧਕੀ ਧੂਰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਾਧ ਉੱਪਰ ਜਾਈਏ ਕੁਰਬਾਨ, ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈਐ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਅਨਿਕ ਬਿਘਨ ਤੇ ਸਾਧੂ ਰਾਖੈ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਚਾਖੈ, ਓਟ ਗਈ ਸੰਤੈ ਦਰ ਆਇਆ, ਸਰਬ ਸੁਖ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਕੋ ਜੀਵਾ ਲਨਹਾਰ, ਭੁੱਖੇ ਕੋ ਦੇਵਤਾ ਦਾਰ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਪੁਰਬ ਲਿਖੇ ਕਾ ਲਹਿਣਾ ਪਾਏ, ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸ ਕਉ ਕਰਨੈ ਜੋਗ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਸਰ ਹੋਆ ਨਾ ਹੋ, ਜਪ ਜਨ ਸਦਾ ਸਦਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣੀ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚ ਨਿਰਮਲ ਏ ਕਰਨੀ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੋ ਨਾਮ ਦੀਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਥੀਆ, ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਤਿਸ ਜਨੇ ਆਵੈ ਹਰ ਪ੍ਰਵਚੀਤ, ਭਗਤ ਭਗ ਸੁਨਿਐ ਤਿਹਲੋਏ, ਜਾ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਕੋ ਹੋਏ, ਸਚ ਕਰਨੀ ਸਚਤਾ ਕੀ ਰਹਿਤ, ਸਚ ਹਿਰਦੈ ਸਤਮੁਖ ਕਹਿਤ, ਸਚੀ ਦਿਸ ਸਚਾ ਆਕਾਰ, ਸਚ ਵਰਤੈ ਸਚਾ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਿਨ ਸਚ ਕਰ ਜਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਸੋਜਨ ਸਚ ਸਮਾਤਾ, ਸਲੋਕ ਰੂਪ ਨ ਰੇਖ ਨ ਰੰਗ ਕਿਛ, ਤ੍ਰਿਉ ਗੁਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਭਿੰਨ, ਤਿਸੈ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ, ਜਿਸ ਹੋਵੈ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਵਨਾਸੀ ਬ੍ਰਹਮਨ ਮੈਂ ਰਾਖ, ਮਾਨੁ ਕੀ ਤੂ ਪ੍ਰੀ ਤਿਆਗ, ਤਿਸ ਤੇ ਪਰੈ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕੋਏ, ਸਰਵ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ, ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਦਾਨਾ, ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰ ਗਹੀਰ ਸੁਜਾਨਾ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੋਬਿੰਦ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਦਿਆਲ ਬਖਸੰਦ, ਸਾਧ ਤੇਰੇ ਕੀ ਚਰਨੀ ਪਾਉ, ਨਾਨਕ ਕੈ ਮਨ ਹੈ ਨਰਾਉ, ਮਨਸਾ ਪੂਰਨ ਸਰਨਾ ਜੋਗ, ਜੋ ਕਿਰਪਾਇਆ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਹਰਨ ਭਰਨ ਜਾ ਕਾ ਨਿਤ੍ਰ ਪੂਰ, ਤਿਸ ਕਾ ਮੰਤਰ ਨਾ ਜਾਣੈ ਹੋਰ, ਅਨੰਤ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਸਜਾ ਕੈ, ਸਰਬ ਥੋਕ ਸੁਨੀ ਹੈ ਕਰਤਾ ਕੈ, ਰਾਜ ਮੈਂ ਰਾਜੂਗ ਮੈਂ ਜੋਗੀ, ਤਬ ਮੈਂ ਤਪੇਸ਼ਰ ਗ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੈਂ ਭੋਗੀ, ਧਿਆਏ ਧਿਆਏ ਭਗਤੈ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਕਿਨੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਜਾ ਕੀ ਲੀਲਾ ਕੀ ਮਿਤ ਨਾਹੇ, ਸਗਲ ਦੇਵ ਹਾਰੇ ਅਵਗਾਹੇ, ਪਿਤਾ ਕਾ ਜਨਮ ਕੇ ਜਾਣੈ ਪੂਤ, ਸਗਲ ਪੁਰੋਈ ਆਪਣੇ ਸੂਤ, ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ, ਜਨਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੇ, ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਏ, ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾਏ, ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਸਥਾਨ, ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਨਾਨਾ ਜਾ ਕੇ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਭੇਖ ਕਰੈ ਰੰਗ, ਨਾਨਾ ਵਿਧ ਕਿਨੋ ਵਿਸਥਾਰ, ਪ੍ਰਭ ਅਵਨਾਸੀ ਏਕੰਕਾਰ,
नाना चलत करे किन माहे पूरे पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरुख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा की बाणी सत पुरुख समाहि सुमाणी सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए किसे सफली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नान गुरते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कह हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जपता की गत हुए आप सत किया सब सत अपे जाने अपनी मित गत जिसकी सिर सो करण हार वर्ण बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत सुपावे सो वर्तिया विस्मन विस्म भय विस्मा जिन बूझिया तसाया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै वचन पदार्थ लहे वे दाते दुख कट नहार जा कै संग तरह संसार जन का सेवक सो वट भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै श्लोक आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत हवनहार आप सत सत सवधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जा कह हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निर्भउ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माय समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाय बूझै बूझनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रपालनहारा सेवक की राखै निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रवतार है नानक सो सेवक साथ साथ सुमार है अपने जन का परदा ढाक है अपने सेवक की सर पर रख है अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत रख है ताकि गत मित कोई न लख है प्रभु के सेवक को न पहुंचे प्रभु के सेवक कुछ दे उच्चे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दिस प्रगटाया निकी कीरी मैं कल रख है भस्म कर लश्कर कोट लाख है जिसका शासन काटता पोता को राख देख कर हाथ मानस जतन करत वह पात तिसके करत विरते जात मारण राख अवर न कोई सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच कर रे प्राणी जप नानक प्रबल कविडानी बार बार बार प्रभ जपी है पिय मृत्यु मन तंत्र पिय ना मृतन जिन गुरमुख पाया इसकी चवरना ही दृष्टाया नाम तन नम रूप रंग नम सुखर नाम का संग नाम रजो जंत्रिपताने मंत्र नाम मैं नाम समाने उठत बैठत सोवत नाम कौ नानक जन कै सतकाम बोलो जह जे बा दिन रात प्रभ अपने जन की नींदात करै भगता तुम कह चाय प्रभ अपने शिव रह समाये।

नाम हरवत यो धन संचो भगवंत। संत जना का निर्मल मंत एकास राखु मनवाहे सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिस तन को चार कुंठ उठतावै सो तनु हर सेवा ते पावै। जिस रुको नित बाचै मीत सो सुख साधु संग परीत। जिस सोभा को करह भली करनी सा सोभा भज हर की सरनी। अनिको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवकत लाए। सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक दरगह परवान। मन पर बुद्ध हर कह नाए दै जिस धावता बैठाए। ताकु बिघन न लागे कुए जाके हृदय बसे हर सोए। कल ताती ठंडा हर नाओ सिमर सिमर सदा सुख पाओ। पाओ बिन सह पूरन हुए आस भगत पाए आत्म प्रगास। तित कर जाए बसे अविनाशी कहो नानक काटी जमफासी। तत् विचार कह जन साचा जन मरै सो काचू काचा। आवागमन मिटै प्रभु सेव आप त्याग शरण गुरुदेव। यो रत्न जन्म का हुए उदार हर हर सुमर।

मन लाए। मन बांचत मन बंचत नानक फल पाए। संग ना चालस तेरे तना तू क्या लपटावे मूर्ख मना। सुतमीत कुटंबर बनता इनते कहो तुम कवन सुनाता। राज रंग माया विस्तार इनते कहो कवन छुटकार। आसु हस्ती रथ सवारी झूठा डंप झूठ पासारी। जिन दिए तिस बुझे ना बेगाना नाम विसार नानक पछताना। गुर की मत तू लेह आने भगत बिना बहु डूबे सियाने।

फिर जाप अष्टपदी। जब अकार कछ न दृष्टिता पापुन तब कहते होता, जब तारी आप

तब हरख सो कहो किसे व्यापत। जब अपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। अपन केला वर्तीजा नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को बनी। जब एक हर अगम पार तब नरक सुर कहो कौन अवतारू। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए। जब आप है आप अपनी जोत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै। अपन चल तब करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अबनासी सुखे अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जमकी त्रास कहो किस होए। जब अभिगत गोचर प्रवेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन गोचर गाते तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते। अपना पापी चर जा नानक अपन रूप आपी पर जा। जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिदर लगत को कीश। जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तय किसे भू कवन तृप्तावै। करण करावन करने हारु नानक करते का नाही सुमार। जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बा मित्र सुत पाई। जय सर्व कलाया पै परवीन तय वेद कतेव कहा को चीन। जब अपन आपा पुरता है तो सगन अपसगन कहा विचार है। जय अपन ऊचापन अपनेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा। विषमन विषमर

को नरक को स्वर्ग वंशावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह भरम पै पार दुख सुख मान अपमान अनेक प्रकार कियो बख्यान आपन खेल आप कर देखै खेल संकुचै तो नानक कै जय अविगत भगत आप जय पसरै पासार संत प्रताप दू पाकाय पे तनी उनकी शोभा उन्हों बनी आपै कौत करै आनंद चोर्य आपै रस भूगन निरजोग जिस भावै तिस आपना इलावै जिस भावै तिस खेल खिलावै।

अन दिन को जय गुरु के पैर। ए लोक सुखी ए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभु आपै मेले। साध संग मिल करहु आनंद, गुण गावहु प्रभु परमानंद। राम नाम तत करहु विचार, दुर्लभ देह का करो उदार। अमृत बचनर के गुण गाओ, प्राण तरन का यह सुहाओ। आठ पहर प्रभु नीरा, मिटै ज्ञान बिन सह अंधेरा। सुन उपदेश हृदय बसाओ, मन इच्छे नानक फल पाओ। हलत पलत दुए लेहु सुवार, राम नाम अंतर उतार। पूरे गुर की पूरी दिखिया, जिस मन बसै ति साच परिखिया। मन तन नाम जपो लिवलाए, दुख दर्द मन ते पहु जाए। सच वापार करहु वापारी, दर गहन बह खेप तुम्हारी। एका टेक रखो मन बाहे, नानक बहुर नया बह जाहे। तिस्ते दूर कहा को जाए, उबरे रखन हार त्याए। निर्भव जपै सगल भव मिटै, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै। जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई

अमृत जा की दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा सेवक परवान अंतर जा।

कह न जाई ये चर्च बिस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाई, नानक तिस जन सूझी पाई, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट व्याप रहा भगवंत, तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पानी बैसंतर माहे, चार कुंट दह दिसे समाहे, किस्ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुर प्रसाद नानक सुख पाओ, वेद प्राण सिमृत मह देख, सस्यर सूर नक्षत्र महेक, बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कब हूं डोले।

आपन जस आप ही सुना, आवन जाने खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया, सब कह मद अलिप्त रहे, जो किछ कहना सुआपे कहे, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता ले समाए, इस्ते हुए सुना ही बुरा, और कहो किने कछ करा, आ भला कर तू तत्नी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, पूत पूत अपन संगराच, ताकि गतमित कही न जाए, दूसर हुए तां सोजी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक हो जान, जो जाने तिस दा सुख हुए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओ तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुख जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस पर सा सब जगत तराया, जन आवन काहे सुवाऊ, जन कै संग चित आवै नाऊ, आप मुक्त मुक्त

मन अंतर की उतरे चिंद आस नित्या गोत रंग संत जना की धूल मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संगगन सागर तरहु हर तन के पर लेहु भंडार नानक गुरपूरे नमस्कार केम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उधारू जियु गुण गोविंद अमृत रस पियु चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक

बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोई, सब जुग मैं ता की गत होए। गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपरा सा संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जा कै मस्त करम प्रपाए, सात शरण नानक ते आए, जिस

कृपाल उदारे, निर्मल शोभा अमृता की बानी, एक नाम मन माहि सुमानी, दुख रोग बिन से पै परमु, साध नाम निर्मलता के कर्म सब त्यू

सुखमनी सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गावहे। आनंद सुनो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख

जे तुद जो तुद सेवै सो तू है होवै तुद सेवक पैज रखाई। भंडार भरे भगती हर तेरे जिस पावै तिस देवाई। जिस तू देह सोई जन पाए होर नेह फल।

सद पुछिए बह बह करे विचार अंधीरे ज्ञान विहूणी पाए प्रेम उदार ज्ञानी न चेवा जेवा वह रूप करे सिगार ऊंचे कूके वादा गावे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उदय संजय।

प्रभु अपना अचरज तुम्हें वडाई धार अनुग्रह आप प्रभु स्वामी पत मत कीनी पूरी सदा सदा नानक बलिहारी।

कर इसनाना गुरपूरै कीने दाना सब कुशल खेम प्रब तारे सही सलामत सब थोक उबारे गुर का शब्द विचारे रहाओ साध संग मल लाथी पार ब्रह्म भयो साथी नानक नाम ते आया आद पुरख प्रभ पाया सोरठ महल्ला पंजवा जित पार ब्रह्म चित आया सो कर दय बसाया सुख सागर गुर पाया ता सहसा सगल मिटाया हर के नाम की वडियाई आठ पहर गुण गाई गुर पूरे ते पाई रहाओ प्रभ की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास वखाणी गुर पूरे ते जानी सोरठ महल्ला पंजवा आगे सुख गुर दिया पाछे कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया अपने सतगुर की वडियाई मन इच्छे फल पाई संतहु दिन दिन चढ़ै सुवाई रहाओ जी जंत सब भय दयाला प्रभ अपने कर दीने सहज सुभाए मिले गोपाला नानक साच पतीने सोरठ महल्ला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिर्द हमारे राम नाम मन लागा जम लज्जाए कर भागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता बंधन काट करे मन निर्मल पूरन पुरख विदाता रहाओ नानक प्रभ अविनाशी ताकि सेव न बिरथी जासी अनद कर है तेरे दासा जप पूरन होई आसा सोरठ महल्ला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूरन पैज सवारी मन चिंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा ते आया संत हो तिस बिन अवर न कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर दीने सगल जी वस कीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया सोरठ महल्ला पंजवा ताप गवाया गुरपूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर किरपा आप दीने बेदन सदगुर आप गवाई सिख संत सब सर से हुए हर हर नाम ते आई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संता देव है हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साच सुपाखिया।

प्रव चरणी मन लागा, पूरन जाके भागा, मिल साध संग हर त्याया, आठ पहर आराध्यो हर हर, मन चिंदिया फल पाया। रहाओ परा पूर्वला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्स सुमावै, नानक दास सच्चे गुण गावै। सोरठ महला पंजवा, गुरमिल प्रभु चितारिया, कार्ज सब सुवारिया, मंदा को न अलाए,

शीतला ठाकर हाई, बिघन गए हर नाई। मेरा प्रभ हुआ सदा दयाला, अरदास सुनी भगत अपने की, सब जी भये कृपाला। रहाओ प्रभ करण कारण सुमराथा, हर सिमरत सब दुख लाथा। अपने दास की सुनी बेनंती, सब नानक सुख सवंती। सोरठ महला पंजवां, अपना गुरु ते आए, मिल कुशल सेती घर आए। ना मैं की वडियाई, तिस कीमत कहन न जाई। संतहु हर हर हर आराधहु, हर आराध सबु किछ पाई। कार्ज सगले साध हो रहाओ, प्रेम भगत प्रभ लागी। सो पाए जिस वड भागी, जन नानक नाम ते आया। तिन सर्ब सुखा।

ना आनंद कर है नर नारी हर हर प्रभ कृपा तारी संत हो सुख हुआ सब थाई पार ब्रह्म पूरन परमेश्वर रव रहया सबनी जाई रहा तुर की बाणी आई तिन सगली चिन्ह

ओ सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोरठ महला पंजवा गुरपूरा आराधे कार्य सगले साधे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संत हो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दूर।

आठ पहर तुम त्याई रहा। जो जन भजन करे प्रभ तेरा, किसे अंदेशा नाही, सतगुर चरण लगे।

भयो कृपाल दीन दुख भंजन आपे सब बिद थाटी खिन मैं राख लियो जन अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुरु गोविंद।

आओ। सुनी पुकार समरथ सुवामी, बंधन काट सुवारे, पहर सिर पाओ सेवक जन मेले, नानक प्रगट।

पूत रथ संपत धन पूरन सब मही अवर सगल मिथिया ए जानो भजन राम को सही। फिरत फिरत बहुते जुग हारियो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं।

राम भगत नह कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन धन जोरन कौ ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा।

पार धन पर दारा स्यों रचियो बिरथा जन्म सिरावै मद माया कै भयो बावरू सूजत नह कछ ज्ञाना घट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म न जाना जब ही शरण साध की आयो दुर्मत

अज हू समझ कछ बिगरियो नाहन, भज ले नाम मुरार। कहो नानक निज मत साधन कौ, भाख्यो तुहे पुकार। सोरठ महला नौवां, एह जग मीत न देखियो कोई, सगल जगत अपने।

भय भंजन जस ताकु बिसरायो स्वान पूछ जो भयो ना सुधो बहुत जतन मैं कीनो नानक लाज।

वह मत साई मन बैराग रत कौ बैरागी शब्द मन विद्या मेरी माई अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहिब स्यों लिवलाई रहाउ।

मनुआ पौन बिंद सुखवासी नाम वसै सुख पाई जिहबा नेत्र स्रोत सच राते जल बूजी तिस तुझ है बुझाई आस निरास रह बैरागी निज कर ताड़ी लाई भिखिया नाम रजे संतोखी अमृत सहज पियाई।

अपर अपार अगम अगोचर कहने कीम न पाई सुन समाद महापरमार्थ तीन भवन पत नामं मस्तक लेख जिया जगजोनी सिर सिर लेख सहामं कर्म सुकर्म कराए आपे आपे भगत दृढ़ामं मन मुख झूठ लह पह मानं आपे ज्ञान अगामं जिन चाख्या से साध जानन ज्यों गुंगे मिठियाई अकथै काक्या कथिय भाई चालू सदा रजाई गुरदाता मेले ता मत हुवै निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चल है भाई और क्या को करे चुतराई एक परम भुलाए।

पिंड तुम्हारा सेवा करी जे किछ हुवे अपना जियो पिंड तुम्हारा सतगुर मिले कृपा कीनी अमृत नाम अधारा गगनंतर वासिया गुण परगासिया गुण मह ज्ञान त्यान नाम मन भावे कह कहावे तत्तो तत्व खान शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द जग बौरान पूरा बैरागी सहज सुभागी

सफल है। संसार तो जाना केड़ा सफल है थे केड़ा सफल नहीं। उंजते दुनिया पता नहीं रोज किन्नी जा रही है, रोज आ रही है। उहदे विच किन्ने क जीव होणगे जिहड़ी अपनी यात्रा सफल करके जांदे होणगे। ते एक ऐसी ओ बख्शिश गुरु दी जिहड़ी मोहर है, उस मोहर नू लेके यात्रा उस जीव दी सफल हुंदी है। सतगुरु कहिंदे ने फिर सफल सफल सफल पई यात्रा। आपां बहुते वचन नहीं करने, बाणी द्वारा सतगुरु दे वचनां द्वारा जितने भी हाजिर बैठे हो, मैं बेनती करूंगा सारे हाजरियां लो आइए। बस साडी हाजरी यही है सत्संग, ताकि ये याद जड़ी है। धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह, माता गुजर कौर जी, चारे साहिबजादे, बस ये अरदास करके जाया जे दाता हिरदे विच ए तेरियां यादां बनियां रहन। जे यादां कायम रहन गियां बनियां रहन गियां ते मैं समझदा शायद सारे आने वाले साल विच शायद ये जीवन किते वो यादां बदल के रख देन। ये जीवन बदल के रख देन, कोई क्रांति लै आवे ये यादां। ऐसी स्पिरिट सतगुरु साडे अंदर भी भर देवे, जिहड़ी स्पिरिट साहिबजादियां दे अंदर। धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने आप कुट कुट के भरे, गुरु अमरदास पातशाह जी दे ए मिठे वचन। जितने भी बैठे हो मैं बेनती करांगा सारे हाजरियां लो।

माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया कि लै सगल जगत चंगे आईया बुरे आया।

0: सतगुरु जी दी पावन पवित्र तन की गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्रसाद सिंह जीओ प्यार साहब आसीस बख्शिश करदे हां, एकाग्रता बख्शिश करदे हां, गुरु दी बख्शिश गुरु फतेह प्रवान करनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा,
1: वाहिगुरु जी की फतेह।
0: हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे, तिस जन दुख लिख नहीं आवे। आओ उस महान बख्शिश जिहड़ी सानू कीर्तन दे रूप मालिक ने बख्शिश कीती है प्राप्त करन लई, उस रस नू माणन दे लई जिहड़ा रस तुसी रोजाना ही अपने उस पावन स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब तो दूर बैठे टीवी राही श्रवण करते हो, कि इं महसूस करते हो कि असी धन गुरु रामदास पिता की गोद श्री दरबार साहब विखे बैठे हुए हैं, उसी आनंद विच आपां ने जुड़ के इत्थे कीर्तन करना है। तुसी सारे ने नाल नाल सहयोग बख्शिश करना है, रल के कीर्तन करना है, सारे ने नाल नाल रसना की हाजरी भी लवानी है। गुरु बख्शिश करे, कृपा करे। आओ गुरु रामदास पातशाह जी कृपा करन, आप अपना मेरा भरिया हथ रख के रसना ते बैठ के अपने इस कीर्तन की सेवा लैन। कुछ मिनटा लिए और रल के वाहगुरु का सिमरन करिए, उस तो उपरंत आपकी शब्द श्रवण करोगे। तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम।

सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी पावन पवित्र मुकद्दस तीन की गोद्युत आनंद मान है गुरु प्रसाद संगत जी सतगुरु जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है। आज संध्या वेले दे इन विशेष गुरमुख समागम आप जी की गुरबाणी कीर्तन रही सेवा करने का सुभाग आप जी के दर्शन करने का सतगुरु जी ने एक अवसर बख्शिश किया है। बाणी का कथन है, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे इहां उहां जो काम तेरे। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। यह कीर्तन की महानता, यह कीर्तन की वड्याई। जिहड़े सचमुच अंदरों गुरु शब्द दे नाल जुड़ के गुरु नानक दे उस महान बख्शिश कीते कीर्तन का आनंद माणदे हन, वह कीर्तन जिहड़ा तुसी रोज सचखंड श्री हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब जी तो दूर बैठे सरवण करते हो। मैं ये हर थां बेनती करदा कि भावें गुरु रामदास जी नूं प्यार करन वाला, उस दर नूं प्यार करन वाला शरीरक तौर ते हजारां किलोमीटर दूर बैठा होवे, पर जदों उस दर दे दर्शन हुंदे हन, उत्थों प्रसारित हुंदे कीर्तन दी धुनी कन्नां विच पैंदी है, ते उस लई इउं नहीं लगता कि असीं दूर बैठे कीर्तन सुन रहे हां। उस लई इउं लगता है कि धन गुरु रामदास पिता दी गोद श्री दरबार साहिब विखे बैठे हुए हैं। यह बख्शिश है उस दर दी, उस घर दी। डिठे सबे थाव नहीं तुत जिहिया, बदो पुरख बिदाते तातु सोहिया। वसदी सगन अपार अनूप रामदास सुर, हर हा नानक कस मल जाए नाय रामदास सुर। तन तन रामदास गुर जिन सिर यात्रे सवार। आओ सारे ने रल के कीर्तन करना है। जिथे तुसी कन्ना दे नाल बाणी नूं सरवण करना है, उथे नाल कोशिश करनी है साडी रचना दी भी हाजरी लगे, साडी रचना भी निर्मल ते सुची होई गुरु दे शब्द नाल, उस वाहिगुरु दे सिमरन दे नाल। इसलिए सारे रल के आपां कीर्तन करिए। अगला शब्द आप जी श्रवण करोगे, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम अवखद मुख देवे काटे जम की फंदा। करो कृपा सारी।